तो तीजे नू लगदियां ने, तीजे तो चौथे नू लगदियां ने। ते इस वक्त ये जिहड़ी बहुती मनुखता है केड़ी बीमारी दी लपेट दे च है, अज दा ये जिहड़ा वाक आया इस नू आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रख रहा। हौं में अहंकार इहदी लपेट दे च बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारा जगत है। इंज नहीं कहना चाहिदा कि सारे ही बहु गिणती दे च, बहुते इसे दी लपेट दे च। कुछ गुरमुखां नू छड़ के, कुछ भगतां नू छड़ के, कुछ अभ्यासियां नू छड़ के। ते अभ्यासी भी ओ जिन्हां दी साधना तोड़ नहीं दी है, जिहड़े अभ्यास करदे पए ने उहनां नू अभ्यास करन दा अहंकार हो जांदा है, जो सेवा करदे पए ने उहनां नू सेवा करन दा अहंकार हो जांदा है, जो कीर्तन करदे ने उहनां नू कीर्तन करन दा अहंकार हो जांदा है, जो कथा करदे ने उहनां नू कथा करन दा अहंकार हो जांदा है, जो गुरुद्वारियां दी संभाल करदे ने उहनां नू सेवा संभाल दा अहंकार हो जांदा है। वरस के ए अहंकार ए हौमें गुरु अमरदास जी महाराज के कथन अनुसार इस वक्त जगत रोग है। जगत जिवें जगत गुरु आउंदे ने ना, जगत रोग, जगत बीमारी, सारे जगत दी बीमारी, सारी दुनिया जिस दी लपेटे च होवे, कुछ एक नू छड़ के। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। अहम भाव हौमें, हौमें दा मतलब है मैं हां और मैं होवा, तू नहीं है, तू कौन है। मैं हां मैं होवा अजोके दौर दी बहुत वड्डी बीमारी। पर ये ना समझ लेना बाकी जिहड़ियां चार बीमारियां ने ओ नहीं ने, ओ दबियां होईयां ने, ओ उपसाहट नाल पैदा होंदियां ने, वक्ती पैदा होईयां चलियां गईयां। जिवें जुकाम लगया चला गया, जिवें मत्था दुखण आया सवेरे घंटे बाद ठीक हो गया। हुण ठीक है, एक अद गोली लई ते मत्थे दी पीड़ ते चली गई, पर एक अद गोली नाल शुगर थोड़ी जांदी, कैंसर थोड़ी जांदा है, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪੇਦਿਕ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ। ਹੌਮੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੌਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। इस तरह की गल नहीं है। कई ऐसे ने जो लंबी बीमारी नू छेती खत्म करना चाहते ने, भई नहीं एक गोली खाइए तो ठीक हो जाए, और फिर संतां महंतां दे डेरियां और इस तरह के डिंबी गुरुआं दे चक्करां च पैंदे ने, भई ऐसा मंत्र दे शाम तक ही गल बन जाए। तो राधा स्वामी देंदे ने, आओ बस 10 मिनट साधना करो, अनाहद नाद वजन लग पाएगा, ते कन्नां दे च उंगलियां देख के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਪ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋਵਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। मंत्र तंत्र अकाली मैनू परचे वंड रहा सी, परिक्रमा ची ते उचेचा मैनू ही आके दिते उसने, ते ओदे च जिहड़ी पंक्ति सी भी जिहड़ा निराकार दा जाप करे, अवतार दा जाप करे, बस उहनू परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिन्हियां अवतार संबंधी जिन्हियां निराकार संबंधी पंक्तियां सन ना, वो कठियां कीतियां गई, ते संत दास थले कोई लिखे होया संत संत दास ते वंड रहे, ये जपो गुरबाणी इस दा कहंदी है। तो उन्हां मूर्खां नू कौन समझाए गुरबाणी, ते ये भी कहंदी है, रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवन गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। गुरबाणी ते ये भी कहंदी, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब गंद, अल्लाह दे कर बंदगी। गुरु बाणी ते भी कहती, अल्लाह दी बंदगी कर, राम दा नाम जप, गोपाल दा नाम जप, गोरख सोई जिन गोए उठा ली, करते बार न लागे, उते गोरख है, गोरख गोरख जप। इत्थे ते अनेका नाम ने,
पर

प्रथम सिनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा समझियो एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नूं सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दोई ने, लोड़ां विच जीवना, लोभ विच जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा। लोभ दा सुभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहिंदा है, अधूरा ही रहिंदा। जगत दे पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे जीवे, लोभ दे नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना, मंगता, तीजा साधन खोना, लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे इह तीन साधन ने। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति करनी, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती। जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक, भिखारी। और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार विच ये तिन्ने मौजूद ने। ये ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खो के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना है। मंग के लोड़ा की पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्हां नूं बकायदा नाम दिते ने। जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नूं मुसलमान कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा, गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जो उम्मत दा जन्म होया उन्हों सिख आख्या गया। सिख ने, भिक्षु ने, मुसलमान ने, सनातन मत हिंदू धर्म दी शाखा एक नहीं है।

एकत्र करी है माया, दान पुण्य नहीं संतन सेवा, एक ही काज ना आया, कार्या भरण सवारी सिज्जा, कामन थाट बनाया।

0: তোহর মুসলা সারায়া খেল পহু বেগারি ন্যায় কর কাম পহু অনুগ্রহ যাক প্রভ কো তিস হৃদয় নাম বসায়া সাধ সঙ্গত কা পাছা পরে জান নানক হর রস পায়া পায়ো অনুগ্রহ যাক প্রভ কো তিস হৃদয় নাম বসায়া সাধ সঙ্গত কা পাছা পরে জান নানক হর রস পায়া ওয়াহিগুরু জি কা খালসা ওয়াহিগুরু জি কি ফতে।
1: গুরু রূপ সিং জিও সনেমর ফতে কবুল করনে ওয়াহিগুরু জি কা খালসা पावन पवित्र वाक राग टोडी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मूल जिहड़ा इस विशा प्रकरण चल रहा है जीवन के लक्ष्य को समझे बिना जीवन व्यतीत करना व्यर्थ है फिजूल। जीवन का लक्ष्य की है, क्यों जी रहे हैं, जीवन क्यों है, बगौर मुताला करेंगे। किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है, ये एक साधन से लक्ष्य नहीं सी। किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है, धन संपदा है, इस तो अगे अज तक मनुख दिया निगाह नहीं गई, इतें ही रुकिया जाए, इतें ही रुकिया जाए।

0: तो साहब कहने ने ये लक्ष्य नहीं है, जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, जीवन का ये निशाना नहीं है, जीवन का ये घर नहीं है। जेड़े जेड़े लक्ष्य बनाए ने ये तो साधन ने, साधन लक्ष्य समझ ले तो कुदरती गल है, जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य से असल दिख बल जाएगा, बल जाएगा। तो लक्ष्य होने आया है, लक्ष्य भूले आया, इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनो लक्ष्य नो। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, ये भूले आया। करीबन करीबन सारी कायनात नो भूले आया, होया कोई करोड़ों विच एक अद मनुख नू लक्ष्य का पता, लक्ष्य की समझ है, बाकियां नू नहीं है। जिस जिसनू भी लक्ष्य का बोध नहीं है, महाराज कहने ने उदा संसार ते आना व्यर्थ है, फिजूल फिजूल जी रहे है, व्यर्थ जी रहे है। इस तरह इस विचारधारा नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते ने। मैं अर्ज करना सार्थक है उस मनुख का जीवना जिनू लक्ष्य की समझ है कि जीवन लक्ष्य की तरफ जा रहे है। लक्ष्य की कोई समझ ही नहीं है, कि जब समझ ही नहीं है तो फिर जीवन उस पासे नहीं जा सकता। चंगे चंगे जिन्हों असी सत्संगी कहने, प्रेमी कहने, नितनेमी कहने, इन्हों के भी जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, नहीं। इन्होंने भी साधन ही लक्ष्य समझे हुए है, कि किसी हद तक जो लक्ष्य परमात्मा है इन्हू साधन की तरह वरतते हैं कि हे प्रभु तू ऐ करी, तू ऐ करी, तू ऐ करी। यह नहीं कि हे प्रभु तू मिले, उसका मिल जाना सब कुछ का मिल जाना है, उसकी प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति है। ठीक कहता एक सूफी, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहिंदा है जिस दिन का मैं रब नूं मंगया हुण होर कुछ मंगना चंगा ही नहीं लगता। रब कोल की मंगया, मैं रब नूं ही मंगया और कुछ नहीं मंगया। परमात्मा कोलों की मंगया, परमात्मा कोलों परमात्मा नूं ही मंगया। बड़ा सियाणा होवेगा, सूझवान होवेगा, यही सियाणा है। बाकी सब मूल ने जो परमात्मा कोलो होर होर ते मंग लेंदे ने, पर परमात्मा नू नहीं मंगदे। ते जिहड़े होर होर मंगदे ने, सब कहिंदे ने मम्मा मांगन हार इयाना, ये सब इयाने ने, बच्चे ने, नादान ने, ना समझना। मम्मा मांगन हार इयाना, इयाने ने खिलौने ही मंगने ने। कई दफा खिडौणियां दी ममता करके, खिडौणियां दी पकड़ करके मां नूं भी भुल जांदा, प्यो नूं भी भुल जांदा। जरा वड्डा हो गया, खिडौने वड्डे हो गए ने, हुण परिवार करके निरंकार नूं ही भुल गए, हुण पदार्थां करके परमात्मा नूं ही भुल गए। परमात्मा को अगर कुछ मंगण वास्ते भी जाता, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई साधना भी करता है, जप तप भी करता है, परमात्मा को मंगता है, परमात्मा नूं छोड़ के सब कुछ मंगता है, सब कुछ मंगता है एक परमात्मा नूं छोड़ के। जिहड़ा जिहड़ा मंगता है और जो कुछ मनुख मंगता है, वो ते गुरबाणी कहिंदी बिना मंगे ही दे रहा है। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਭਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਨ ਮੰਗ ਮੰਗ ਮੰਗਨ ਮੰਗ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਛੱਡ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਨ ਮੰਗ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਂਥੇ ਪਰੇ ਪਰਾ। ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਗ। ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰ, ਉੱਠਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਆ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦਾ ਸਫਲ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਸ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦ ਜੀਵਨ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਨਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
1: ਟੁੱਡੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ।
0: ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਵਿਅਰਥ। ਜੇ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ।
1: ਅਣਕੂ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁ ਪੜਤਾ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਡਾਇਆ।
0: ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ, ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ अंतम संस्कार की बकायदा डेट गवर्नमेंट वालों मिलती है, हॉस्पिटल तो मिलती है। पांच दिन बाद, दस दिन बाद, महीने बाद, इतने दिन तक वो मुर्दा मुर्दा घर विच रहिंदा है। अंतम संस्कार वाले दिन घर विच लियाया जांदा है, सारे दर्शन कर दिन फिर ले जांदे हैं। थाईलैंड विच एक दो समागम मैनू देखण नू मिले, क्योंकि एक पतवंता सिंह उन्हां दा दोस्त चलाना कर गया सी, तो मैं उन्हों कहा, मैं कि थाईलैंड वासियां दी मैं अंतम क्रिया देखनी है, एक ही कर देना ये लोग की कर देना। मैनू कहन लगे मस्कीन जी, आज अंतम क्रिया नहीं होनी, उते भी पंजी दिन मुर्दा घर विच रहेगा, ते भी पच्ची दिन घर विच बैठक चलती है सवेरे ते शाम, बिरादरी दे बंदे आंदे ने। फिर भी पच्ची दिन उन्हां नूं सवेरे शाम अच्छे तो अच्छा पकवान खिलाया जांदा है, जो ब्याह शादियां च भी नहीं आउंदा, इस वास्ते मरण ते खर्च ज्यादा है। और उन्हां दे पुरोहित पंडित कुछ पढ़दे रहिंदे ने, कुछ गाउंदे रहिंदे ने, लोकी आउंदे ने, घंटा अद्धा घंटा बैठते ने, चले जाते ने, खाते ने, पीते ने, चले जाते। मैं कह मैं देखना है, जिथे गए वो कम से कम 11 दिन हो गए सन घर विच मुर्दे नू रखिया, पर जब मैं देखिया तो दंग रह गया, इंज लगता सी जिवें सुत्ता पिया, सुत्ता पिया, ना कोई चेहरा कुमलाया होया, ना कोई हाथ पैर कुमलाए हुए। मैं कह हद हो गई, 11 दिन हो गए ने गुजरिया, ये तो इंज लगता जिवें सुत्ता पिया। एक अजकल धंधा है ऐसे केमिकल्स मुर्दे के अंदर पा दिते जाते हैं, इस ढंग का संवार दिता जाता है, श्रृंगार दिता जाता है, इंज लगता जिवें सुत्ता पिया। यह घटना भी याद आ गई है, कह गया सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह हुण ते नहीं रहे, हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, इन्हों के रिश्तेदार कोई बेगोवाल रेंदे सन, वह नौजवान किधरे जर्मनी कम करता से हादसे चलाना कर गया, ते तीन महीनों बाद लाश आई इत्थे। उन्हां दे नजदास इत्थे कथा कर रहा सी, ते मैनू बजुर्गवार सिंह साहब कहण लगे चलना है। मैं कि ठीक है चलदे आं, पर जद मैं उन्हां कोल सुनिया तीन महीनों बाद लाश आई है, ते मैं कि रिहा की आउणा है, तीन महीनों बाद लाश आई है, बेगोवाल गए पहुंचे, जिस बक्से च लकड़ दे बक्से च ओ लाश आई, सारियां दे सामने जद इकट्ठ होया, खोली गई, मैं भी उत्थे मौजूद, ते मैं कि हड्डियां दे ही दर्शन होणगे, होर की होवेगा, सड़िया होया मांस होवेगा, होर की होवेगा, गलियां होईयां आंदरां होणगियां, होर की होवेगा। पर नहीं, जैसे बक्सा खोले आ गया इंज लगदा सी जिवें सुत्ता, तीन महीने बाद। और बक्से दे खोलदे आ हवा दे लगदे आ तो मुरझाण भी लग पिया, चेहरे की रौनक आहिस्ता आहिस्ता जान लग पे। मुख्तसर अर्ज ये करा, सारी दुनिया विच, एशिया विच, यूरोप विच, अमेरिका, कैनेडा विच एक धंधा है, और यदि बड़ी वड्डी फीस लई जांदी है, जितना ज्यादा शिंगारना है उतनी ज्यादा फीस देनी पे, जितने ज्यादा दिन रखना है उतनी ज्यादा फीस देनी पे। मुर्दियां नूं शिंगारन दा धंध है, ते जद मुर्दा शिंगारिया जांदा है इंज लगदा है जैसे जिंदा हो रहा है। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कुछ अगे की गल करते हैं। महाराज कहते लक्ष्य को समझे बिना ते लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना हर मनुख जिंदा नहीं मुर्दा है। फर्क सिर्फ इतना है कुछ लाशां चिता ते चढ़िया हुई ने कुछ लाशां चल दिया फिर दिया। कुछ मुर्दे कबरां दे पए ने कुछ मुर्दे घरां च बैठे ने दुकानां ते बैठे ने। कुछ मुर्दे कब्रिस्तान दे च ने कुछ मुर्दे बाजारां दे च घूम रहे ने। मुर्दे जरा शिंगारे हुए ने संवारे हुए ने मुर्दे ने। सिर्फ तन दे तल दी जिंदगी दिखाई दे रही है अंदरों मन मुर्दा है। हुण मैं अर्ज करा मुर्दे नु जिवाना बड़ा औखा है। मन नु जिहड़ा मुर्दा आख्या गया वह इस तरह गूढ़ी नींद जिवें आम कहिंदे ने नींद ते मौत बराबर है। मौत भी संबंध तोड़ देंदी है नींद भी संबंध तोड़ देंदी है। मन सुत्ता पिया परमात्मा दे प्रति इस वास्ते कहिंदे आ मुर्दा है। पर यह मुर्दा जिंदा हो सकता है इनू जिवाया जा सकता है इनू जिंदा किया जा सकता है इनू उठाया जा सकता है। कीर्तन दे राही कथा दे राही सतसंग दे राही जैसे लक्ष्य की समझ आएगी ये फिर लक्ष्य की प्राप्ति तो बिना रहेगा नहीं। हुण मैं फिर दोहरा दिया इस सतसंग का फल की है लक्ष्य की समझ आ गई है। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है जीवन का लक्ष्य ईश्वर है गुरु है। समझ आ गई सतसंग का फल मिल गया ये मनुख हुण जप तप किए बिना रहेगा नहीं। मनुख हुण साधना लई वध तो वध समां कढ़ेगा। यह मनुख हुण जप तप लई बहुत वड्डा समां कढ़ेगा। लक्ष्य की समझ नहीं आई तो महाराज कहिंदे ने फिर मुर्दे ही ने। यह मुर्दे जरा चलते फिरते ने कदी घर दे चाहुंदे ने कदी बाजार दे चाहुंदे ने कदी दुकान दे चाहुंदे ने कदी फैक्ट्री दे चाहुंदे ने। सब चलदियां फिरदियां लाशां महाराज ऐसा कह रहे ने। होर भी ऐसा फरमान करदे ने नाम बिना जेता व्यवहार। गुरु अर्जन देव जी नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मेरे तक मिथ्या सिंगार। सारा हार शिंगार मुर्दियां का सिंगार मुर्दे शिंगारे हैं। कब्रिस्तान दे शायद इतनिया कबरां ना होवन जिन्हिया चलदियां फिरदियां कबरां दिखाई दे। कुछ भी नहीं है जीवन में कुछ भी नहीं। जरा फोल के वेख लेना सिवाय मुरदमी तो होर कुछ भी नहीं निकलेगा। सिवारे रोने पिटण तो होर कुछ भी नहीं निकले। खोल के देख लेना। मैं अक्सर अर्ज करता हूं हर मनुख ने पता नहीं कितना रोना छुपाया होया कितना दुख छुपाया होया। ये हसदे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे। ये चमकदे ते चुपड़े मत्थे कितना कलेश छुपाई बैठे ने। फिर घरों की खामोशी पता नहीं कितने भांबड़ा नु छुपाई बैठी है। बस ये चल दिया फिर दिया लाशां ये कबरां ये शमशान घाट महाराज इस तरह कहते ने भावें कितना शिंगारे है कितना साजो समान है कितनी धन संपदा है। महाराज कहिंदे ने ध्यान नाल इस नूं विचारना है मुर्दा शिंगारिया है मुर्दा शिंगारिया जिंदा नहीं है। जिंदा ते तां हो सकदा सी सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर ना जीवे कोई नहीं जीवदा। बाकियां दे मन ते मरे हुए ने। इस मरे हुए मन नूं इस तरह लेना क्योंकि तार्किक तर्क कर सकता है तन दे तल ते जो मर गया जिंदा नहीं हो सकता नहीं हो सकता। चलो मैं थोनू घटना भी सुनावा। सिंगापुर दे च घटना بیٹھے ایک چنگے دھناڑ دا نوجوان لڑکا چلانا کر گیا سنگھ یہ گھٹنا بڑی مشہور اتوں ہی امرتسر دے نکٹوں سنت گئے ہوئے سن اپنے آپ سنت کہندے سن لوگ منتے ہیں اس طرح کے سنتوں ہی سنت آخیا جا منیا جا گرو گوبند سنگھ کا باڑا تے اتار کے انہوں نے باڑا اپنا دتا ہوا انہوں نے کیا اس نو گھر دے چ رکھو شیشے دے بکسے چ اگلے سال میں آواں گا اس نو زندہ کراں گا ملیشیا سنگاپور دے چ اے گھٹنا بڑی مشہور ہوئی زندہ کراں گا بدقسمتی سمجھ لو میں انہوں دے نال کدھرے اتھے ہی سی تے اسے گردوارے کتھا کر رہا سی جتھے وہ آئے میں کہہ بیٹھا میں کہ سال بعد یہ ہڈیاں بھی نہیں لبنیا آخدا پیا سنت آخے پیا تو تناؤ کھڑا ہو گیا میرے نال جھگڑا شروع ہو گیا کہنے لگے سال اڈیکے بنا تسی کس طرح کہہ سکتے ہو میں کہ میں کہہ سکتا ربی نہیں ہے ایشوری نہیں ہے پران نکل چکے نے ڈاکٹروں نے کہہ دیتا ہے مردہ ہے نہیں زندہ ہوئے گا نہیں ہوئے گا سال بعد وہ کہنے زندہ کراں گا میں کہ سال بعد شاید اس دا ماس بھی نہ لبے ہڈیاں بھی نہ لبے یہ تناؤ کافی ودیا مینوں بڑا برا والا آخیا وہ جنہ کا لڑکا گزریا سی کہ سنوں پتہ نہیں ہے سنت سراپ دے دین گے تو میں کہ پھر سمجھ لینا مینوں سراپ لگ جائے تو پھر سچ سمجھ لینا تو جے نہ لگے تو پھر میری گل نو سچ سمجھنا انہوں نے شیشے دے بکسے دے جد گھر رکھن دا یتن کیتا تے پولیس گھر پہنچ گئی مردہ گھر نہیں رکھ سکتے سنگاپور دے قانون دے مطابق قبرستان دے دفن کرنا پے تو ہوں مسلمانوں کا قبرستان انہوں نے انکار کر دیتا ہے سکھ ایسے نہیں دفنا دینا عیسائیوں کا قبرستان انہوں نے بھی انکار کر دیتا اتے صرف عیسائی دفن ہو سکتے ہیں بودھیاں دے قبرستان دے دفن کیتا تے سنتاں نے کیا سال بعد زندہ کران گے سال تو پہلے پہلے سنت آپ چلانا کر گئے انہوں نے بھی شیشے دے بکسے چ رکھ کے سوار کے رکھنا پیا کیونکہ انہوں نے بھی اس طرح کی وسیعت کی ہوئی سی شاید سوچتے ہونگے دو چار سالوں بعد میں زندہ ہو جاواں گا بکسے چ ہی رکھنا میں نے پر چونکہ وہ بہتیاں نو اپنا چیلا بنا رہے چیلا بنا چکے سن تے چیلے سارے دھنوان سن تے دھنوان کوئی سو دے چھ ایک قد کول عقل ہوندی ہے باقی تے عقل نو تالے لا کے ہی رکھ دے باقیاں دی عقل تے بس دانے ہی ہوندی اور کچھ نہیں اس تو علاوہ انہاں دی عقل نہیں ہوندی مایا داری ات انا بولا اتے اندھے ہوندے نے نہ سچ ویکھ سکدے نے نہ سچ سن سکدے نے میں اے لفظ بھی کہے میں کہ تھانوں گربانی دی سچائی نہ سنائی دے رہی ہے نہ دکھائی دے رہی تو میں کہ گربانی کی روشنی کیا جا سکتا ہے اندھے اج اس گھٹنا نو اندازن 25-26 سال ہو گئے شاید اس تو بھی زیادہ

आखिया लैणिया तू चिकड़ दे चों लोटा नहीं कढ़िया सारी मनुखता नू कढ़िया क्योंकि जो चिकण लगन तो डरदा है वो किसे नू चिकड़ दे चों नहीं कढ़ सकेगा। परोपकार करना बहुत कठिन है। किसे नू बलदी होई अग दे चों ओही कढ़ सकदा है जो सेक लगन तो डरे ना। और गंदगी दे चों ओही किसे नू कढ़ सकदा है जो छिट्टे पैण तो डरे ना। इस तरह गाहे बगाहे गुरु नानक देव जी महाराज इम्तिहान लेंदे रहे ते भाई लेना इस इम्तिहान ते हर वेले ही पूरे उतरदे रहे। ए हुक्म मनन दी मूर्ति सन हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। इस सिद्धांत दे मुताबिक भाई लेना जी जी रहे सन। एक होर प्रीख्या दी घड़ी आई। इतनी वड्डी दात इतनी वड्डी सौगात आपनूं इह किवें प्राप्त होई पिछोकड़ बहुत सुंदर इतिहास है। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने धारणक रूप धारण कीता डरावना ऐसा लिबास पहन लिया पिछे कुत्ते ला लै हथ दे च बहुत वड्डा सोटा रख लिया झोले दे च पत्थर रख लै। मखलूक जिहड़ी पिछे चल रही सी महाराज ने पत्थर मारने शुरू कीते। अद्धी दुनिया वापस हो गई बे गुरु नानक देव जी भूतने हो गए ने बेताले हो गए ने इन्हां नूं कुछ हो गया। महाराज पिछे मुड़ के देखदे ने अजे भी कुछ नाल चल रहे ने। तां आप दे हथ जो सोटा सी ਉਹ ਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਭਈ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ सोने दियां चांदी दियां ओ सुटनियां शुरू कीतियां। भाई लेने तो बिना सब ने चुक लिया और वापस हो गए। पत्थर खा के सोटा खा के जो नाल चल रहे सन सोने दी मोर नहीं सहार सके। देखण दिच आया है दुख करके ते कई दफा मनुख परमात्मा दा नाम लई जांदा हुंदा है किसे संत दे पिछे चलदा है। पर जद सुखां दी मार पै जाए ऐसा आलसी हो जांदा है ऐसा दलिदरी हो जांदा है रुक जांदा है। पर सोने नूं भी लिताड़ के सुख नूं भी लिताड़ के लैणा गुरु नानक दे पिछे चलदे रहे। अज जगत गुरु बाबे ने पूछ ही लिया लैणिया सारे चले गए तू नहीं गया। हाथ जोड़ के लैणा जी कहण लगे गुरदेव पिता सब दे अपने अपने घर सन अपने घरां नूं चले गए। मैं ते निथावा थोड़े कदम ही मेरा घर ने थोड़ी थां ही मेरी थां है होर ते मेरी कोई अपनी थां नहीं होर ते मेरा कोई अपना घर नहीं। ए भी गुरु नानक दी पाई हुई कसवटी सी। इस ते भी लैणा जी पूरे उतरे मुकम्मल उतरे। भाई लैणा दी मनोबिरती ऐसी दिन दिन रंग चढ़दा गया वद्दा गया। गुरु नानक दे अंग दे नाल छूंदिया छूंदिया वाकई गुरु नानक दे अंग आप दे अंदर प्रदर्शित होने लग पे आप दे अंदर प्रगट होने लग पे। अज करतारपुर दे च बड़ी संगत आई बहुत संगत आई सतगुरां दे दर्शनां लई और पातशाह दे अमृतमई बचन सुनन लई। भरी संगत दे च गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री चंद नूं आवाज मारी ते आखिया बेटा संगत बहुत आई। हां मां संगत ते बहुत आई गुरुदेव पिता।
दूर दूर तो आई है। तो साड़ी इच्छा है सबनू मिठाई छकाई है। लंगर देच बहुत सारा तरह तरह दा मिष्ठान बनवाई है। उस वक्त श्री चंद ने कहा, महाराज अचनचेत ते इंतजाम करना औखा है। अच्छा इंज करो फिर, जे अचानक इंतजाम करना औखा है तो इस सामने जो जंड दा दरखत है इस ते चढ़ जाओ, इनू झूणो, इनू हिलाओ, मिठाई टपकेगी थल्ले चादरां विछाओ, लंगर दिच वंडांगे, संगत दी झोली च पावांगे। श्री चंद हथ जोड़ के कहन लगे, गुरदेव पिता जंड ते ऐसा दरख्त है जिन्हों कोई ढंग दा फल भी नहीं लगदा, आप मिठाई दी गल कर दियो। आप दी उम्र वडेरी हो गई, अनहोनियां गल्लां करन लग पे। कहिंदे ने हू बहु लक्ष्मी दास ने भी इनकार कीता और ओही लफ्ज दोहराए, गुरदेव पिता वड्डे भराता ठीक कहिंदे ने, जंड दे दरखत तो मिठाइयां नहीं टपकदियां। ता सब तो संगत देच अखीर बैठे भाई लैणे नूं गुरु नानक ने आवाज मारी। गुरु नानक दी संगत करदिआं लैणा ओ मूर्ति बन गए, हुक्म मनना जिन्हां दा सुभा हो गया सी, हुक्म मनना जिन्हां दी अवस्था बन गई, हुक्म नूं मनना जिन्हां लई इक आनंद सी, रस सी, खेड़ा सी, खुशी सी। खुशी महसूस करदे जद गुरु नानक किसे कारज लई आप नूं कहिंदे, भज्जे होया है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए हुक्म। तां पातशाह कहण लगे, तूं चढ़ इस जंड दे दरखत ते, इस नूं हिला, मिठाइयां टपकणगियां, आपां संगत दिच वंडणियां ने। इकदम भाई लैणा जी दरखत ते चढ़न लगे ने। श्री चंद ने आवाज मार के आख्या, लैणा जी दरख्तां तो कदी मिठाई नहीं टपके, आप अनहोनी गल ना करो और अनहोनी होनी भी नहीं, लोकी की आखनगे। तो उस वक्त भाई लैणा बाबा श्री चंद नूं कहण लगे, मिठाई टपके भावे ना टपके इस नाल मेरा कोई मतलब नहीं, मैं ते गुरुदेव पिता दा हुक्म मनना है, हुक्म मनना यही मेरी खुशी है, हुक्म मनना यही मेरी लई आनंद है, और हुक्म मन लेना यही सब तो वड्डी बख्शिश है, यही सब तो वड्डी कृपा है। हुक्म मनन दी मूर्ति, हुक्म मनन दा स्वरूप साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज अज अपनी अवस्था उस टिकाने ते लै गए कि गुरु नानक ने सिंघासन ते बिठा दिता। जगत देखती दंग रह गई कि लैणे दी फेराइन नानका दोही खटिए, कल तक लहणा गुरु नानक दी परिक्रमा करदा सी, अज गुरु नानक लहणे दी परिक्रमा कर रहे ने। कल तक लहणा गुरु नानक दे कदमां ते अपना मस्तक रखदा सी, अज गुरु नानक ने अपना मस्तक लहणे दे कदमां ते रख दिता है। दुनिया देख के दंग रह गई। दूजा दीवा जल पिया, जोत तो जोत जली, चानना वंडन लई, रोशनी वंडन लई, आपदी दृष्टि अमृतमई, जैसे कि भट भट कहिंदे ने, दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन। मेर भरी दृष्ट दे नाल आप जिसनू वेख लैन उदे अंतिशकरण तो पाप निकल जांदे सन। इस तरह दी बरकतां दे आप मालिक बने। आप करतारपुर तो खंडूर साहब विच आ गए। कनौज दे मैदान तो शेर शाह सूरी तो हार खा के हुमायूं अस्फान दी तरफ भज रहा सी, जा रहा सी।
रस्ते च कोई फकीर मिले पीर मिले ओदी दुआ ले लेंदा सी, ओदे कोल आशीर्वाद लेने दी कोशिश करदा सी कि मैं ए हारी होई बाजी फिर जित जावां। किसे तरीके नाल ए तखत जो मेरे कोल शेर शाह सूरी ने खो लिया है फिर प्राप्त होवे। तो रस्ते दिच किसे ने कह दिता गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज, तुसी उना तो असीस लो, उना तो आशीर्वाद लो। आप ब्यास नू पार करके जद पहुंचे खंडूर साहब, जगमगांदी जोत दे दर्शन कीते पर सतगुर समाधि दे सन। उच्चा उठ के तक के हुमायूं दी तरफ नहीं देखिया। हुमायूं नू हैरानगी हुई क्योंकि पीर फकीर सन्मान करते रहे सन, आदर करते रहे सन, बादशाह रह चुके असी तो बादशाह दा अपना हंकार। मयान चो तलवार कढ ली उसने गुस्से चाके, सतगुरु दे नेत्र खुले, कहन लगे जिथे तलवार चलनी चाहीदी सी तो उत्थे मैदान म्यान दे च रख के भज पे हैं, और जिथे म्यान दे च रखनी चाहीदी है उत्थे तू बाहर कढ रहे हैं। बड़ा कायर है, बड़ा ना समझ है। शर्मसार होया हुमायूं, कदमां ते झुकया, आखिया गुरुदेव पिता माफी, भुल हो गई, गलती हो गई। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उस नूं उपदेश दिता, हुमायूं फकीरां ते तलवार नहीं चलाई दी, फकीरां दी तलवार कोलों अपना नाश कराईदा है। बचन बड़े अगम्मी, फकीर दी जद तलवार चलदी है दूजे दे हंकार नूं कट के रख देंदी है ते दूजे नूं ऐन निर्माणता दी मूर्ति बना देंदी है। वाकई हाथ जुड़ गए सन हुमायूं दे और माफी मंगण लग पिया सी, भुल मंगण लग पिया सी, बापा मेरे कोल भुल हो गई, गलती हो गई। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरुमुखी लिपि दे प्रसार लई गुरबाणी जगत पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके, समझा सके, इना अखरां दे पढ़न पढ़ाण दी तरफ भी काफी रुचि दित्ती। आपने स्वयं बच्चियां नूं पढ़ाना आरंभ कीता ताकि ए परंपरा लंबे व्यापक रूप दे जो है चल सके और जगत उस बाणी नूं पढ़ सके जिस दे च रब्बी अलहाम नाजल होया है, जिस दे च रब्बी ज्ञान नाजल होया है। आपने बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर दी परंपरा चलाई। इस दे च आप दी सुपत्नी धर्म पत्नी जगत माता खीवी जी दा बहुत वड्डा हथ, और आप दे लंगर देच जो कुछ बनदा सी सत्य ब्रह्मंडे दी वार देच बकायदा उसका जो है जिक्र है। लंगत दौलत वंडिये रस अमृत खीर घयाली, घ्यो दे नाल ओत परोत खीर दिन रात लंगर दे चल दिए, पकवान सुंदर बनदे ने, आए हुए यात्रों नूं छकाए जांदे ने, पहले भोजन नाल उन्हां नूं तृप्त कीता जांदा है ते जद उन्हां दा तन तृप्त हो जांदा है तो उन्हां दी मन दी तृप्ति लई फिर भजन दा इंतजाम, फिर नाम बाणी दा अभ्यास साहिब ए करवांदे सन ताकि तन दी तृप्ति तो बाद इन्हां नूं मन दा सुकून भी मिले, मन दी शांति भी मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी चलाई हुई परंपरा लंगर दी उस नूं आपने विस्तृत कीता, विस्तार सहित फैलाया जगाया। फिर इसे तरीके दे नाल परोपकार करदे होए गुरबाणी दा उपदेश देंदे होए सन 1606 बिक्रमी च खंडूर साहब विच आप ज्योति जोत समा गए और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा परम रूप स्थापन कर गए धन गुरु अमरदास जी महाराज, जो आप दे
ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁੜਮ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦਰਜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਧਨ ਬਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭੱਟ ਆਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਣ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲਤ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂਲ ਆਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਨ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜੋਤ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਬਿਰਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪ ਤਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾਵੇ ਰਾਵ ਸਸ ਕਿਰਣ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ

मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर। इति काम चोर है, लोभ चोर है, मेरा सारा जप तप कीता होया चुरा के ले गया, नसा के ले गया, मैनू खाली कर गया। जिवें अंदर दी दौलत नू लुटन वाले बहुते ने, बाहर दी असमत दौलत ते संस्कृति नू लुटन वाले भी बहुत ने। इस वास्ते मनुख नू बाहरों सताधारी बनना चाहिए, अंदरों सतवादी बनना चाहिए। सत अंदर दी ताकत है, सता बाहर दी ताकत है। जिस पहलू तो भी मनुख कमजोर होवेगा, जिंदगी अधूरी हो जाएगी, ते अपूर्णता जड़ी है ए दुख ते संताप नू जन्म देवेगी। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने जद इस ढंग दा नारा लाया तो कुदरती गल है सताधारियां नू उखियाई होनी सी, लिहाजा आप नू ग्वालियर दे किले विच कैद कर दिता गया। कसूर आप दा की? कसूर इतना ही कि आप शस्त्रधारी हो गए, सेना रखन लग पे, घोड़ा सवार रखन लग पे, और सिख नू उन्होंने संत दे नाल नाल सिपाही बना दिता। ए गल नागवार गुजरी, सताधारियां नू आप नू ग्वालियर दे किले दे विच बंद कर दिता गया। चारों पासे हुंदी बगावत देख के ते गुरु दर्शना दी श्रद्धा सिखां दे अंदर उमड़ी हुई वेख के जहांगीर नू झुकना पिया, रिहाई दा हुक्म सादर कीता, तां गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कह दिता, असी तां जेल तो बाहर आना है, किले तो बाहर आना है, साडे नाल ए जो तुसी 52 राजे कैद कर रखे ने ए भी रिहा करने पैणगे। राजस्थान दे राजवाड़े, मध्य भारत दे राजवाड़ियां दे तमाम राजे छोटे छोटे जागीरदार ग्वालियर दे किले विच बंद सन, और ए टोटल कुल 52 सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने जद उन्हां दी दीन दशा देखी ते आप नूं बड़ा तरस आया। ए ते ठीक है कि जिस दिन जेल विच गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गए, अंदर कथा कीर्तन दे प्रवाह चल पए, राजियां नूं सुकून मिलिया, कैदियां नूं आनंद मिलिया, कैदियां नूं कुछ जीवन मिलिया। पर जद ए हुक्मनामा अज आया कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं आजाद कीता जाण लगा, तां 52 दे 52 राजे दुखे हो गए, पीड़ित हो गए, रोण लग पए, आखण लगे, पातशाह थोड़ा सदका इत्थे शांति बनी हुई सी, मन नूं कुछ रस मिल रहा सी, आप दा विछोड़ा किस तरह सारी गए, ते आप जा रहे हो। दयालु सतगुर ने कहा, नहीं, असी तां किले तो बाहर निकलांगे जे तुसी भी निकल सके। तो एकदम सतगुर ने कह दिता, असी रिहा नहीं होना, साडे नाल इन्ना 52 राजियां नूं भी आजाद करना पएगा। कहिंदे ने जहांगीर ने यह हुक्म कीता कि जो जो आप दा दामन पकड़ लेगा वो बाहर आ सकेगा। तो 52 कलियां वाला गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने चोला सिलवाया, ते वो चोला पहनिया, एक एक कली एक एक राजे ने पकड़ ली। इस ढंग नाल 52 राजे आप दे नाल ग्वालियर दे किले तो आजाद हो। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज श्रद्धालु सिख नूं किस ढंग नाल गलवकड़ी च लैंदे ने, ए वाकया आगरा दा। जद जहांगीर आप नूं आगरे ले आया ते महलां विच निवास करन लगा, सतगुर कहण लगे, नहीं, असी जमुना दे तट दे उत्ते खैमा बना के उहदे च रवांगे। जहांगीर ने अपना खैमा भी उत्थे ही गड़ दिता। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कहण लगे, थोड़ी होंद दे नाल सिखां दी आवाजाई च फर्क पैगा, क्योंकि चारों पासे पहरेदार ते हर बंदे नूं आण नहीं देणगे, लिहाजा साडे तक संगतां पहुंच नहीं सकणगियां, तुसीं वी खैमा इत्थे ला दित्ता। तो जहांगीर कहण लगा, नहीं पातशाह, मैं पहरा खत्म कर देना, जितने चिर तक आप इत्थे हो कोई पहरा नहीं रहेगा, लोकी खुले आण ते खुले जाण। एक घाइया सिंह जो दिन भर घास खोद के बड़ी मुश्किल नाल

शरीर स्वस्थ खेण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरमत विचारा, गुरबाणी विचार, आप सेवा पंथी रतन भूषण महंत तीरथ सिंह जी पासों गुनियाना मंडी वाले उन्हां पासों आप सरवण कर रहे से। इस माहौल विच, इस सत्संग विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने जो ख्याल बख्शिश कीते ने, वो मैं सेवा दे रूप विच आप जी दी झोली च पाने दी निमाणी कोशिश कर रहे। सानू साड़ी होंद नूं अज तक ते विचारकां ने चार हिस्सों विच वंडिया। प्रथम ते परमात्मा, क्योंकि उस विच असी हैगे आ, वो साड़े विच है तो वो है। फिर इसनू इस तरह वो व्याख्या दे रूप विच लैंदे ने, सूरज। सूरज दी किरण है, किरण दा प्रकाश है, फिर जिथे प्रकाश है वो है। मैं फिर दोहरावां, सूरज है एक, फिर किरण है दो, फिर किरण दा प्रकाश है तीन, फिर जिथे प्रकाश है जो कुछ प्रकाशित हो रहा है वो है। परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, और ये सब कुछ जिथे घटित हो रहा है, प्रगट हो रहा है, वो ये तन, वो ये शरीर, वो ये तन। हुण मैं फिर दोहरावां, सूरज है, किरण है, किरण दा प्रकाश है, ते प्रकाश जिथे पै रहा है, जिथे है, जिस तों जिहड़ी चीज प्रकाशित हो रही है वो है। परमात्मा है, आप सत्संगी हो, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब ने इस तरह ही ख्याल मैनू दिते ने, क्योंकि सब कुछ गुरबाणी विच है और पातशाह ने छुपाया कुछ भी नहीं है। सिर्फ खोलण दी गल है, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निदाना। अपने कोल अपनी गल ते कुछ भी नहीं, ये खजाना है। और गजब दी गल है, इहदे दरवाजे खुलदे ही नहीं। जितना कीमती खजाना होंदा छुपा के रखा जाता, बड़े बड़े लॉकर, बड़े बड़े ताले, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी हिफाजत। कबीर कहंदे ने, रब ते एक ऐसा खजाना है जितना लुटना इन्हें लुट लो, रब ते लुटा के ही राजी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। धन नूं कोई लुटे तो कानून है, समाज है, तरह तरह दे खतरे ने, ते लुटन वाले नूं लुटेरा कहिंदे, लुटेरा कहिंदे। राम नाम दा जिहड़ा खजाना है, कोई खतरा नहीं, किसे प्रकार दा खतरा नहीं। कोई इस खजाने नूं लुट लै, उसे नूं संत कहिंदे।
ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੁੱਟ। ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਤ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਇਸੇ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਸੂਰਜ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਮਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਰਨ ਮਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਰਾਮ,
ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा। किरण सूरज दे चलीन हो जाए तो सूरज है, सूरज तो अलग दिखाई देवे तो किरण है। जीव आत्मा परमात्मा दे चलीन हो जाए तो परमात्मा है, परमात्मा। और जिन्ने चिर तक नियारी दिखाई दे रही उन्ने चिर तक जीव आत्मा, जीव आत्मा है। प्रकाश है ए सूरज दी किरण है परमात्मा दी अंश। मैं फिर दोहरावा, कहो कबीर ए राम की अंश। प्रकृति एक दिन तन नो मन नो इदे जेर असर तन आउंदा पहले प्रकृति दे और प्रकृति तन नू मिटा देंदी। रोज रोज असी मिट रहे हैं, रोज रोज असी घट रहे हैं। जे रोज रोज असी जी रहे हैं ते रोज रोज असी मर रहे हैं। तुसी आखोगे एक ही कहंदे रोज रोज जी रहे हैं, जी रहे हैं, पर रोज रोज मर रहे हैं क्योंकि घट रहे हैं। घटना मिटना ही है और की है। एक मनुख ने चलो 100 साल जीवना है, अज दा एक दिन लंघ गया घट गया, एक दिन घट गया। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। शरीर दोवां दिशावां दे जा रहा है, रोज रोज वध रहा है, रोज रोज घट रहा है। वधना घटना कट्ठा ही चल रहा है, कट्ठा ही चल रहा है। दिस रहा है तन वड्डा हो रहा है, हकीकत विच उम्र घट रही है, घट रही है, घट रहा है। चूंकि घट रहा है तो एक दिन प्रकृति इसनू मिटा दे। ये जड़ा मन है ना, ये नहीं मिटता। जीव आत्मा ते परमात्मा दी अंश मिटन दा मतलब ही नहीं। मन दे अंदर जड़े विचार चल देन तो विचारां नू कौन देखदा है? जीव आत्मा। बंदा कह देंदा ना मेरे विचार ने, ते जे विचार नू मन मन लईए ते मन नू कौन देख रहा है जो कह रहा है मेरे विचार। रात नूं जब तन सौ जांदा ते मन भी गूढ़ी निंदरा दे सो जांदा, जिहनूं सुखोपति कहिंदे ने, सुषुप्ति कहिंदे ने, ते सवेरे उठ के बंदा कहिंदा बड़ी गूढ़ी नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई। तो तन ते सुन हो गया सी, मन भी सुन हो गया सी। ये बोध किसनूं हो रहा है? बड़ी गूढ़ी नींद आई। ये जीव आत्मा नूं बोध। मन ते विश्राम दे चला गए, मन ते सौ गए। तार्किक एक इस तरह की तर्क खड़ी करते ने, जीव आत्मा परमात्मा की अंश है, ये सूरज की किरण है, फिर अंदर इतना अंधेरा क्यों है? क्यों अंधेरा? ये परमात्मा की अंश है, परमात्मा परम आनंद है, ए उसकी अंश है, पर अंदर इतना दुख क्यों है? मैं ये मूल सिद्धांतिक नुक्ते थोड़े सामने रख रहा, सारी जिंदगी में कर्म कांड च ना लग जाए। परमात्मा महारस है, आत्मा उसकी अंश है, महारस है, पर जीवन दे इतनी बेरसी कितों आ गई? ये बेरसी क्यों? परमात्मा निर्वैर है, जीव आत्मा उसकी अंश है, फिर अंदर इतना वैर विरोध कितों आ गया?
क्यों आ गए? परमात्मा भय तो रहत है, जीव आत्मा उसकी अंश है, पर अंदर इतना भय, इतना डर, ये कितों आ गए, ये क्यों आ गए? तो पता है, वाम मार्गियां दे एक तपे तबके ने कह देता, अगर आत्मा है तो ये भी लिपाए मानो दी, वरना किरण दे होंदे हो इतना अंधेरा क्यों? किरण दे होंदे हो इतना वैर विरोध क्यों है? अगर किरण सूरज दी है, जीव आत्मा परमात्मा दी है, जेड़ा परमात्मा महारस है, तो इतनी बेरसी क्यों? आप सारे सूझवान बैठे, तर्क बिल्कुल सही है, एवें कोरे जज्बे दे तहत असी नहीं कह सकते, तुसी मुंह रखो मन मुख। गुरमुखताई ते ए आउंदी है, दलील दा जवाब दलील नाल, विचार दा जवाब विचार नाल, तर्क दा जवाब तर्क नाल दे। उन्हां दी तर्क है जीव आत्मा नूं निर्लेप कहना बनदा नहीं। फिर पता है वो की कहंदे ने कि जे जीव आत्मा भी लिपाए मान हो सकदी है तो फिर परमात्मा नूं भी बेदाग कहना बनदा नहीं। वो इंज कहंदे ने वाम मार्ग, वो ये कहंदे जो ना दा एक तबका कोरा नास्तिक हो गया सी, साडा कोई भरोसा नहीं, भरोसा

Celeste. न्याय दे गौतम कुछ होर कहिंदे ने, योग दे पतंजलि कुछ होर कहिंदे ने, जैमिनी कुछ होर कहिंदे ने, कड़ाद कुछ होर कहिंदे ने, कपल कुछ होर कहिंदे ने, व्यास कुछ होर कहिंदे ने। छे शास्त्रां दे छे रिश्ते अलग अलग रस्ते ने, वक वक रस्ते। महात्मा बुद्ध कुछ होर कहिंदे ने और स्वामी महावीर वीर कुछ होर कहिंदे ने, ते मैं फिर ए भी अर्ज करा, गलत कोई भी नहीं कहिंदा, सारे ही सही कहिंदे ने, पर सारे जो कह रहे ने होर होर कह रहे। एक जो कुछ कह रहा है, दूजा उस तो कुछ होर कह रहा है, तीजा उस तो कुछ होर कह रहा है, चौथा उस तो कुछ होर कह रहा है, लेकिन फिर भी सारे सही कह रहे हैं, गलत एक भी नहीं है, भोले होया एक भी नहीं है। इस दे उत्ते मैं उदाहरण देना हुंदा, नदियां सारिया ही सागर की तरफ जांदियां ने और सागर होने लई लपकदियां ने, तड़पदियां ने, पर एक रस्ते तो नहीं जांदियां। गंगा का अपना रस्ता, नर्मदा का अपना रस्ता, सतलज ब्यास रावी चनाब का अपना रस्ता है, सिंध का अपना रस्ता है, इराक दे दजला फरात का अपना रस्ता है, मिस्र दी नील नदी का अपना रस्ता है, इंग्लैंड दे थेम का अपना रस्ता है। जांदे ते सारे ही सागर दे चने, एक रस्ते तो नहीं जांदे। तड़प ते सारिया नदियां दे सागर होण दी है, रस्ता एक नहीं है। चंगा है नदियां कोल ए अकल नहीं, नहीं ते नदियां भी ऐलान कर सकदियां सन, मेरा रस्ता ठीक है। गंगा कह सकदी सी मेरा रस्ता ठीक है, इराक दे दजला फरात जिहड़े दो दरिया उन्हां नूं कह सकदी तुसी गलत जा। ते जे किधरे इहनां कोल अकल भी आउंदी ते जबान भी आउंदी ते इराक दा दजला ते फरात उन्हें उच्ची आवाज नाल कहना सी साडा रस्ता ठीक है, गंगा गलत है, सतलुज गलत है। चंगा इहो जिहां दी अकल उन्हां कोल नहीं है, इहो जिहां दी जबान उन्हां कोल नहीं है, मनुख कोल है, इहदी गलत वरतों करके कहिंदा नहीं इस्लाम ठीक है, ईसाइयत गलत है, ईसाइयत ठीक है, यहूदी गलत ने, हिंदू ठीक ने, बोधी गलत ने, बोधी ठीक ने, जैनी गलत ने, जैनी ठीक ने, सिख गलत ने, या फिर सिख ठीक ने, हिंदू गलत ने, सनातनी गलत ने। इस तरह दी मनुखी दुनिया ते चर्चा है और ये सारिया नदियां ही ने और कुछ भी नहीं है, सब दरिया, सारिया कोल पानी है, अपने अपने झरने का। एक झरना ओदा नाम मुहम्मद है, उथों इस्लाम दा झरना फुटिया। एक झरने दा नाम गुरु नानक है, गुरबाणी दा झरना फुटिया, सिख मत दा झरना फुटिया। एक झरने दा नाम बोध है, उदों बोध होण दा झरना फुटिया है, नाम ने अलग। पर रवानी सारियां दी सागर दी तरफ है, रस्ता सारियां दा एक नहीं है, नहीं है। खोज तड़प ते सारियां दी सागर दी है, मार्ग एक नहीं है, रस्ता एक नहीं है। मूढ़ बुद्धि दे कारण करके किसे वक्त मैं कहिंदा हुंदा सी, ओ गलत है, ओ गलत है, ओ गलत है, पर गुस्ताखी माफ, गुरबाणी पढ़ के जो समझ आई, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, सब दरिया सागर दी तरफ ही जा रहे हैं और किधरे भी नहीं जा रहे, सारिया ही नदियां समुंदर दी तरफ जा रही हैं और किधरे भी नहीं जा रही। ते जद समुंदर विच लीन हो जांदियां तो समुंदर ही हो जांदियां, ना उथे गंगा लभदी है, ना दजला लभदा, ना उथे फरात मिलदा है, ना थेम मिलदा है, ना उथे सत

एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारों दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरों दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाना यही जिंदगी का लक्ष्य होवे, तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा, अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है, इहदे अर्थ ने शिकारी, पुरुष शिकारी है, इसे शिकार की तलाश च है, इसकी खोज यही है, कोई नगन शरीर देखण न मिले, नहीं मिल सकया, इतने पैसे नहीं कि थिएटर दिस जाके किसी नगन स्त्री दे नृत्य नु वेखे, और अजे इतनी धनाडा दी महफिल भी इसनु नसीब ना होवे जिथे अर्ध नगन शरीर आम ने, तो फिर अर्ध नगन शरीर जो फिल्मां दिच ने तस्वीरां दिच ने मूर्तियां दिच ने ओ वेखो। यही कारण है कि नंगियां तस्वीरां खूब बिक रही ने, फैश नावल जिनसियात नाल भरी हुई कहानियां और जिनसी तस्वीरां नाल भरे हुए मैगजीन खूब बिक रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़ाए जा रहे हैं। मनुख मानो बीमार होकर रह गया है, वासना का बीमार, और इसने सहजे सहजे हर माहौल नू दूषित किया है। इस वासना नू प्रार्थना किवें बनाईए, प्रार्थना तो मिलेगा सदीवी सुख, वासना तो मिलता है बिल्कुल मामूली सुख, निमक काम स्वाद कारण पानी, कोट जन्म दुख पावे कोट दिनस दुख पावे। महाराज इस श्लोक विच भी कहंदे ने, अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावणे, बहुत थोड़ा जिहा सुख और तू ऐसा चंचल कर देना, चाहे कोई महान मनुख है ते चाहे कोई तुच्छ, इसे ही अल्प सुख दे फस के रह जांदा है, बचाओ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ढंग दसते ने,

तान कर धर्म वधे नेते रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत्य नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों दी तपस्या नू जला के रख देंदी है कितने दिनों दी साधना कितने दिनों दा परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छे महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जब मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है हां मर गया ये ते ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नू वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नू पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दूध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दूध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दूध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दूध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਬੀਵੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਦਸ ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋ ਕਾ ਮਿਟਨਾ, ਸੱਤਰ ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ,

आमद। देखते सही जिथे मनुख तन दी बहार आई है उथे कलगीधर जैसा यार भी आया है, उथे धन गुरु गोविंद सिंह जैसा यार भी आया है। यार ते आया है, बहार आई है, कोई संगीत नहीं, कोई गीत नहीं। सियाने कहंदे ने फुल्लां दिते जित बुलबुलां चह चहांदियां ने, नगमे गांदियां ने, खिड़ उठते ने फुल, चटक उठते ने गुंचे, खिड़ उठते ने फुल। आदकाल तो ए मनोत चली आई है कि संगीत दा फुलां ते बहुत प्रभाव है और संगीत करके फुल सोने खिलदे ने, वधिया खिड़दे ने, बहुत खिड़दे ने। तो भाई साहब कहंदे ने खबर दे हंद बागुलहा के शगुफ तंद हमा। सारे फुलां नू खबर कर दो, दस दो, कोई वांझा ना रह जाए। सब दे कन्नी खबर कर दो, हर एक फुल नू दस दो। खबर दे हंद बागुलहा

0: आ रहा हूं।
1: सुन ऐ मोर आजन, मेरी करामात देख। मैं जिस हृदय च अपना पैर रख देना, वो अपना बिगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोर आजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़िया होगा, साला बदी जो पड़िया होगा, एक छिन विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध विच सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध विच जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होगा, ये दार्शनिक होगा, ये फिलोसफर होगा, ये चातर होगा। पढ़ो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड भुला के रख देंगा, एक छिन भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध, झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे मूल क्रोध है, ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल देश ते क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे कलेश दा मूल, हे कल मूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। बिखयंत जीवं वसं करोत नर्तं करोत जथा मरकटे। हे क्रोध, तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है। और

कलम पट संग सिर मोरे अनक लहरी कलोलते धावंत जिया बहु परिकारन अनेक भांत बहु डोलते नच मित रंग

ليلى ليلى ما تاكل ليلى بتاكل ليلى براما كل ليلى بطني كل ليلى بچیاں کولو لینا ہے پڑوسی کولو لینا ہے سنسار کولو لینا ہے نرنکار کو لینا ہے دھن لینا ہے سکھ لینا ہے سمپدا لینی ہے جس لینا ہے پربھتا لینی ہے مان لینا ہے سنمان لینا ہے ہر وقت اے لین دی بک اے لین دی ترپ اور اے لین دی اٹھے پیر بنی ہوئی برتی بس یہی لوب ہے ایک ایسی گنڈ نو جنم دین دیئے اسے دا نا ہے لوب عمر دے نال نال اے لوب ود ہے لین دی برتی ود دیئے بڑی پربل ود دیئے اور منک پربل لوبی ہو جاتا ہے لوب منک نو پاپ تے مجبور کرتا ہے جد لین دی برتی لے نہیں سکتی تو اترپت لین دی برتی اے لوب کھون بھی سوچتا ہے چوران بھی سوچتا ہے اے سوچ پاپ ہے پر جد اے لین دی ورتی بہت پربل ہو جائے اے سوچنی شکھر تے پہنچ جائے پاپ پربل ہو جائے تے جد اے کدھرے کھو لیندا ہے چرا لیندا ہے بے ایمانی کر لیندا ہے تو اے اپرادھ بن جاندا ہے بہت وڈی سمبھاونا ہے لوبھی دے اپرادھی ہون دی اور ہمیشہ لوبھیاں تو ہی ایک دوجہ دے دھن نو سمپدا نو خطرہ ہے اگر لوب ویاپک ہوئے ہر ایک دے ہردچ اور بڑا پربل تو ہر ایک دا دھن ہر ایک دی سمپدا خطرے دی سمجھا کدرے چورا لئی جائے گی کدرے کھو لئی جائے گی کدرے لٹ لئی جائے گی لین دی برتی لوگ لوگ دے چھونا لٹیرا لین دی برتی لوگ لوگ لٹیرا لوگ ہی لٹیرا ہو ہی جائے گا اور یہ لازمی صحیح ڈھنگ نال گپت ڈھنگ نال پرگٹ ڈھنگ نال کھون بھی سوچے گا اور اے پاپی ہو جائے گا دین دی برتی میں دین ہے کسے نو سکھ دین ہے کسے نو دھن دین ہے کسے نو سمپدا دینی ہے کسے نو مان سنمان دین ہے دین دی اے پربل برتی ان کہلان دی ہے اور دین دی اسے پربل برتی دا نا ہے دان اور پربل دانی جو ہر وقت دین دی سوچے کسے نو مٹھے بول دینے نے اپنی توفیق اپنی سمرتھا دے مطابق کسے نو مٹھے بول دینے نے جی کلا کول ہے تو کلا دینی ہے گیان دینا ہے سکھ دینا ہے چین دینا ہے آرام دینا ہے سنمان دینا ہے ہر وقت یہ دین دی برتی پن جنم دین دیئے یہی پن دان کہلاندا ہے تدی تے ان دو شبداں دا کٹھا اچارن چل پیا دان پن پن دان دان پن پن دان پنیت کون دانی دانی کون پنیت پاپی کون لوبھی لوبھی کون پاپی پاپ لوب پاپ لوب لوب پاپ یہ دونوں کٹھے پر چلتے ہیں پن دا
दान पुन दान दान पुन ये दो शब्द कट्ठे प्रचलित होए। देन दी ए परबल बिरती हर वक्त सोचनी विच देना होवे। कोई बूटा प्यासा है पानी देना है, कोई पशु प्यासा है इन्हू भी पानी दे दिए, कोई सर्दी तो ठठर रहा है बस्तर दे दिए, कोई बहुत भुखा जापदा है मजबूर जापदा है रोटी दे दिए, अन्न दे दिए धन दे दिए, कला कोल है कोई तो कला सिखा दिए किसी नु कला दे दिए, ज्ञान दे दिए विज्ञान दे दिए, सूझ दे दिए समझ दे दिए। देन दिया यही परबल बिरतियां मनुख नु पुनीत बना देंदियां ने, पुनीत दानी होवेगा। और दानी ध्यानी होवेगा, उसका ध्यान जुड़ेगा। जिथे देन दी बिरती है उथे दान, और जिथे दान है उथे ध्यान है, उथे ध्यान साधना दी सफलता है। उसका ध्यान प्रभु नाम दे जुड़ेगा। जिथे लैन दी परबल बिरती है उथे जदो ध्यान देश भी बैठेगा तो लोभ चेते आएगा, लेना चेते आएगा, लेना है लेना है लेना है, जुड़ना चेते नहीं आएगा। देन वाला ही जुड़ सकता है, लेन वाला नहीं। इस वास्ते ध्यानी लई दान लाजमी और दान खड़ा है देन दियां बिरतियां थे। चलो नहीं ने तेरे कोल लखां करोड़ां हजारां, पर किधरे देन दी बिरती भावना पूरक होवे। एक कौड़ी नु भी भाग लगदे ने और एक कौड़ी भी ध्यान जोड़न विच सफलता दे दिंदी है। भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे ताहे ते गुर सर्व निधान दान देते हैं। दरअसल सवाल ए नहीं दिता की है, सवाल ए देन दी बड़ी प्रबल बिरती है। अगर देन वास्ते कुछ भी ना होवे ते सिर्फ देन दी बिरती होवे तां भी ध्यान जुड़ेगा, लाजमी जुड़ेगा। ते भावे करोड़ां दा दान दिता है, किसे दा मुंह वेख के किसे दा लिहाज करके या स्वर्ग या होर कुछ खुशियां दियां लैण दियां कामनावां नूं मुख लग के मनोकामना नूं मुख रख के दिता है, तो चूंकि उस देन नाल भी लैण दी परबल बिरती जुड़ी हुई है वो तो देना लेना हो गया, वो तो व्यापार है दान नहीं है। लोभ ही बाजार देच भी व्यापार करता है, लोभ ही धर्म मंदिरां देच भी व्यापार करता है, लोभ ही इंज कह लो बेचता है धर्म नो व्यापार करता है, करता है धर्म फिर कुछ लेन दियां कामनावां नु मुख लग के उसनु बेच दे। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा बड़ा सुंदर एक वाक, खत्रियां ता धर्म छोड़या मलेच्छ भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वरन होई धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इको वरन हो गई है, धर्म गति नहीं कर रहा। जिस वरन दे सारी मनुखता आ गई है इस वरन नाल धर्म नहीं चलता, धर्म की गत रही। अगर मिथ नू लईए
ते मनु सिमृति दी वर्ण नू लई है उन्हें चार वर्णा दी वर्ण की थी खत्री ब्राह्मण शूद वैस श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही सारी सृष्टि इक्को वर्ण हो गई धर्म दी गति रुक गई धर्म नहीं चल रहा सारी सृष्टि केड़े वर्ण विच आ गई कि धर्म दा चलना औखा हो गया ब्राह्मण ब्राह्मण नाल धर्म चलता है अगर कोई वाकई ब्राह्मण है कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कैयत है हमारे ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा जो ब्रह्म दा चिंतन करदा है ब्रह्म विच लीन रहिंदा है ब्रह्म दी सोचदा है ब्रह्म नु विचारदा है ब्राह्मण तो ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है क्योंकि ब्रह्म दा चिंतन करदा है ब्रह्म प्राप्त होवे ऐसा सोचता है ब्रह्म नाल जुड़ा ध्यान जोड़दा है ब्रह्म बारे सोचता है विचारदा है तो एते ब्राह्मण होया ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है ब्राह्मण किसे वेशभूषा दा नाम नहीं ब्राह्मण किसे जात दा नाम नहीं ब्राह्मण एक मनोविरति जो ब्रह्म दा चिंतन करे ब्रह्म नु सोचे ब्रह्म नु विचारे ब्रह्म दी प्राप्ति दी कोशिश करे ब्रह्म दे चलीन होण दी कोशिश करे ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा तो ब्राह्मण नाल ते धर्म चलदा है कदी कदाई कोई लखां इस तरह दा पुरुष जिन्हों देख के कह सकिए ब्राह्मण है ये ब्राह्मण है ये तो ब्रह्म विचलीन है ये तो ब्रह्म दा चिंतन कर रहे है तो ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है खत्री नाल भी धर्म चलदा है खत्री कौन खत्री सो जो कर्मा का सूर जिस दे स्वभाव दे सूरवीरता है जिस दे विचारां दे सूरवीरता है जिदी सोचनी दे सूरवीरता है जिस दा खून अन्याय वेख के खोलन लग पैंदा है जिसदा खून मजलूम दा खून बन जांदा है वो अपना खून मजलूम नु देंदा है मजलूम दी रक्षा लई जिसदा खून उछलदा है सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के कौन है सूरबीर जो दीन दी खातर लड़ता है दीन कमजोर दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मनगारे दीन गरीब निमाणा निताणा जो दीन दी बाह पकड़ लवे इति परमात्मा वाला गुण है इति ईश्वरी स्वभाव है इति स्वभाव ही ईश्वरी है दीन दे पक्ष देच खड़ा हो जाए ताकतवर दे पक्ष देच ते सारी दुनिया खड़ा होंदी है शक्तिशाली मनुख दे पक देच ते सारे ही आ जांदन कमजोर दा पक कोई कमजोर नहीं ले सकदा कोई सूरबीर ले सकदा तो सूरबीर दे नाल धर्म चलदा है क्यों सूरबीर ते कमजोर दी रक्षा दी खातर अपनी जान भी दे देंदा है देखदे हां असीं इतिहास नूं सूरबीर किस नूं कहिंदे ने कमजोर दा पक लवे कश्मीर दा ब्राह्मण कमजोर सी गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बांह पकड़ ली ब्राह्मणां दियां गर्दनां बच गईयां क्योंकि किसे बहादुर ने अपनी गर्दन चांदनी चौक दे कटवा दित्ती ब्राह्मणां दे मस्तक दे चमकदे हुए तिलक ललाट कर उठे चमकन लग पे क्योंकि किसे ने अपना खून चांदनी चौंक दे डोल देता बच गई ब्राह्मण दी
ਜਨੇਊ ਦੀ ਡੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਹਾਂਦਾਨੀ ਮਹਾਂਦਾਨੀ। ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਇਹ ਵਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬੋਝਲ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਧਰਮ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਕੇ, ਬੁਹਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣੇ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬੋਝਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਰਕਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਖੱਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬੋਝਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਝਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਦੇ ਚਿਤਨਾ ਉਛਾਲ ਉਬਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ, ਉਹਦੇ ਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੋਝਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿੱਤਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੋ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੋਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
तो खत्म हो गए ब्राह्मण, कोई टामा टामा, खत्म हो गए खत्री, कोई विरला, खत्म हो गए शूदर, कोई एकद, भर गई पृथ्वी वैशानार वैश, सारी सृष्टि वैश हो गई। वैश केवल सौदेबाजी जानता है, वैश हर वक्त बाजार देच है। वो जद बाजार देच है तो बाजार देच है, पर वो जद मंदिर देच है तां भी बाजार देच है, जद वो परिवार विच बैठा है तां भी बाजार देच है, पर जद वो गुरुद्वारे बैठा है तां भी बाजार देच है। वैश वेचना है, वेचना है, वेचना है, छोटा मोटा साजो समान या वड्डा साजो समान वेच के जो अपनी उपजीविका चलांदे ने, ए वैश नहीं, इते किरत है, इते धंधा है। वैश बेचनी है अपनी इज्जत अगर मुल मिले, वेचना है अपना ईमान अगर पूरा मिल मिले, पूरी कीमत मिले। बेचना है देश, बेचनी है कौम अगर पूरा मुल मिले। जो बेचण की सोचदा रहिंदा है वो वैश है, और जो बेच देण दे सफल हो जांदा है वो सफल वैश है। वैश दे नाल धर्म चलदा नहीं, क्योंकि वैश ते धर्म नूं भी बेचदा है। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। ठीक है शायर दा तखयल, खुदा ते वैश दे हाथ च नहीं आएगा, पर जे किधरे आ जाए ते वैश ने खुदा दी भी बोली लानी है, उसनु भी बेचना है। वैश लोभी होंदा है, लोभी पापी होंदा है, वैश लोभी होंदा है, लोभी पुनीत नहीं होंदा, वैश लोभी होंदा है, लोभी सब कुछ बेचना चाहता है, बदले विच दुगना तिगना लेना चाहता है। मुल मिले कौम बेचनी है, इज्जत बेचनी है, असमत बेचनी है, ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है। वैश शब्द ते उर्दू फारसी दा है, बाजार विच बैठ के जिहड़ी स्त्री अपनी असमत बेच दी है उहदे लई शब्द है वैश्या। वैश्या सिर्फ असमत बेचती है, और वाकई असमत बिक गई तो सब कुछ बेच जाता है। कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देता है, कोई अपनी असमत बेच के सब कुछ बेच देती है। इसनु मैं फिर दोहरावा, कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देता है, कोई असमत बेच के अपना सब कुछ बेच देती है। वैश वैशिया दोवें निकट ने, इक्को ही सिंघासन ते बैठने। कला बेचनी है, ज्ञान बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, कथा बेचनी है, कीर्तन बेचना है। समा लंघ गया जब नजराने हैं पेट आंदे सन, पेटा आंदी सी, नहीं मुल चाहिदा है। तो जब मुल चाहिदा है तो ज्ञान बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कीर्तन बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कथा बिक गई, जब मुल चाहिदा है तो धर्म बिक गया, सेवा बिक गई, ईमान बिक गया। मुल चाहिदा है, और जिसनु वड्डा मुल चाहिदा है बेच देगा इज्जत, बेच देगा असमत, बेच देगा शराफत,
बेच देगा अपना विश्वास, सब कुछ बेचेगा। वैश नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अफसोस नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, सारी सृष्टि इंज कह लो बहु गिणती वैश हो गई है, धर्म व्यापक पद्धर ते नहीं चल रहा। ओया किसी एक कद मनुख नाल चल रहा है, हजारां च लखां च कोई एक कद, तो ये कोई बहुत गिणती नहीं। सारा संसार लोभी हो गया है। लोभी धार्मिक नहीं हो सकता, लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी पापी हो सकता है, पुनीत नहीं हो सकता, दानी पुनीत हो सकता है। लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी ते पापी है, दानी पुनीत है, लोभी पापी है। तो पाप व्यापक हो गया, पाप छा गया, पाप ग्रासी पृथ्वी, धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। जब पापियां नाल धरती भर जाती है, भाव लोभियां नाल भर जाती है, तो एक दफा ते जमीन दे जर्रे भी पुकार उठते ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, पापी ही पापी, पापी ही पापी। सब कुछ बेचण लई तैयार ने, और सब कुछ खरीदण दे खरीदार भी मौजूद ने। बाजार बन गया सारा संसार, बाजार बन गए मंदिर, बाजार बन गए धर्मस्थल, बाजार बन गए तीरथ। सनातन मत दा सिरमौर तीरथ बनारस शिवा ने वसाई सी, एक महान योगी ने, एक महान तपीश्वर ने। तपीश्वर पैदा होवन, संत पैदा होवन, जोगी पैदा होवन, ध्यानी पैदा होवन, ज्ञानी पैदा होवन, ये नगरी वसाई। पर इस नगरी विच लोभी आ गए, लोभी जिथे कठे हो जान, लोभी लंपट आंदा है, ठग आंदा है। लोभी दे अंदर अनेकां लहरां चलदियां ने लैण दियां, लिहाजा लोभी हर पासे लंपट पड़ा फैलांदा है। तदी ते मेरे पातशाह ने कहा, हे उभा लंपट संग सिर मोरे, अनकलेरी कलोलते। लोभी स्वयं भ्रष्ट होंदा है, सब कुछ नु भ्रष्ट करके रख देंदा है। लोभी तीर्थां नु मंदिरां नु बाजार बना के रख देंदा है, और बाजार विच ते ठगी चलदी है। बाजार ते ठगी दा चोली दामन दा जो है साथ है। ये लोभ इस दे कारण करके जीव पता नहीं कितनी थावां ते भरमदा है, भटकदा है, और उसका मन डोलदा है, और हर जगह नू भ्रष्ट करदा है। हर वक्त लैण दी बिरती, लैण दी बिरती, लैण दी बिरती। लोभी दे नाल हर वक्त बाजार चलदा है, बाजार विच मनुख कुछ लैण लई जांदा है। लेकिन लोभी नू ऐसा बाजार चाहिदा है, लेना ते सब कुछ है और सब दे कोलो लेना है, बदले दिच देना कुछ भी नहीं, ऐसा बाजार चाहिदा है। इस तरह दा बाजार लोभी हर वक्त अपनी कल्पना दी दुनिया दिच बनाई रखता है। लिहाजा लोभी दे नाल ही बाजार जांदा है। लोभी जिथे बैठा है उथे ही बाजार है, चाहे वह हरी मंदिर बैठा है, चाहे गुरुद्वारे बैठा है, चाहे खाना काबा देच बैठा है, चाहे चर्च देच बैठा है। लोभी तां बाजार देच बैठा है, वो किधरे मंदिर देच नहीं बैठा, वो किधरे गुरुद्वारे नहीं बैठा, किधरे चर्च ते मस्जिद देच नहीं बैठा। लोभी जिथे भी बैठा है बाजार देच बैठा है। लोभी जिधर चलता है बाजार नाल चलता है,
लोभी जिधर चल रहा है ठगिया उस दे नाल ही जो है चल रही ने। फिर सतगुरुदेव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे इन फरमान करते ने, नच मित्रं

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र देवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पादशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। इक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयाल।

और काम ऐसी विचार दे देता है, लोग भड़क उठता है। झूठ मदद करता है, पाप अंग संग हो जाता है। अंधीरयते ज्ञान विहूणी भाए भरे मुर्दार। अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख नु कुछ भी नहीं पता कौन मेरे ते राज कर रहे है और लोग मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे है। लोभी दी तर्ज जिंदगी इस तरह है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, अकरण करोत अखादं खादं असाजं साज समझ्या। लोभी वो कुछ करता है जो नहीं करना चाहिदा, वो खांदा है जो नहीं खाना चाहिदा, और लोभी दा सारा साजो समान मलीन है।

राजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है, ताकि मनुख नू अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणा दा सागर है, मनुख औगुणा दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे औगुण भी गिनने औखे ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे, उंज ते अनंत औगण ने अनंत औगण ने, पर मूल कमजोरियां मूल औगण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित दे च लियाया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणा दे जमना है। सतगुरु मोह तो आरंभ करते ने, मोह मेरा मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नू कहंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं,

0: अत बलना बहु मर्दने।
1: हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं।
0: गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने।
1: बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते
0: मानुक
1: चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख
0: गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने।
1: फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ दे च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां वी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं, जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखण वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਮ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नूं भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लग के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुब्बी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़िया दे च लिपटिया होया एक करूप और महिला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा किसका बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान की बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नूं वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नूं वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नूं अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नूं अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आं, मनुख नूं अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनूं चंगे नहीं लगते। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभुदी शरण प्रकट प्रभुदा चिंतन कर रहे नाम दे गीत गांदिया गांदिया मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जांदा है निर्मोह ही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उस दे चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी सारे का सारा पराया इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा डर विच जीवेगा दुख विच जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उदी अकल छोटी उदी सोचनी छोटी उदी समझ छोटी उदा सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साडे देश देच एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखिया सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जद ए ना सुनिया राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसे है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह दा लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखे जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के का हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख की पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मौत उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ गए दिस जाए संसार एक वृक्ष दी तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रारब्ध वश होके संजोग वश होके इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मन दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, क्योंकि रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु की लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया। परिवार दे मोह की दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह का पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह की पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखिए गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सन्मान दिता, बिठाया, आन दा कारण पुछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा दसोरा राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी सुत

थड़े पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी कीता है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसदिया होया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़ियो,

असीते, काफी समय तो समझी बैठे हैं सरा है, एक आउंदा है एक जाऊंदा है, एक फूल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। ये एक प्रभु की लीला समुची सरां दे आवागमन बने होया है और इत्थे सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गल ते नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल ए गल राजे निर्मव दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजात सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है, सतगुर अजीत सिंह नू तैयार कर दें, होर सिखा नू नहीं कहंदे किधरे, इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है, हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं, पूरी गल सुन, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा, स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने, शहादत दा जाम पींदे आया दोवें लखते जिगरां नू देखते ने, शुक्र करते ने परमात्मा का, ईश्वर का, अकाल पुरख का, असीम प्रेम की दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ना ताज दा मो, ना तहत दा मो, ना परिवार दा मो, ना संसार दा मो, केवल प्रेम अकाल पुरख का,
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करता है अरदास करता है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार। आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ए मैं रहंदी है, ए अहं भाव रहंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहंदा है, चलदा रहंदा है। ए जन्म ते मरण दा मूल है, ए जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, होमें एहा जात है, होमें कर्म कमाए, होमें एही बंदना फिर जौनी पाए। होमें दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे च पा देंदा है, बहुत लंबे गेड़ दे च पा देंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां देच अपने अपने दोष पाए जांदे ने। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित हुंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा हुंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा हुंदा है।

बंधन प्रभुता के मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जो बंदी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब दे चौवे या मन दी सोचनी दे चौवे। जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चौवे। सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे। दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचा देच है, विचारा देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी तो पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दीरग कर माने औरन को लगमात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीदम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हां, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनु एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं और ए अहंकार मूर्खता दे खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है।
ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इति सारे भूल के पागल होए फिर देने कौन, हम बड़ कव मैं बहुत वड्डा कवि मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वह अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। एक हद न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानंद, इक ना सुरत न सिद्ध अक्कल सिर अक्षर का भयो न लहंत। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां अहंकारी दा मस्तक अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे तू है कि हड्डियां दे ते चढ़े होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी,
और चर्बी देते लिपटी हो ये खलड़ी और की है तुम हड्डियां दा मान जोबन जवानी दा मान हड्डियां दा मान मांस दा मान मिंज दा मान और खलड़ी दा मान इस तो अलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने कर्पूर बहुप सुगंधा परस मानक देहं मलिन मजारुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो कपूर ते चंदन जैसियां फुलना जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने मजार उदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी अज्ञानी एवें ही तन दा अहंकार करदा है जो बंदा अहंकार करदा है फिर धन दा अहंकार धनवंता होए क्या को गर्वे जा सब किस तिसका दिया दरबे पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन किथे उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है और सब तो वड्डा वसीला है ए तन और तन उस दी देन है ये दिमाग उस दी देन है और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है वसीला ते परमात्मा है पर धन दा अहंकार सता प्रभुता इस दा अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है दान दा अहंकार ज्ञान दा अहंकार सेवा दा अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है बनाई जांदा है बनाई जांदा है बनाई जांदा है और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है क्योंकि जगत तो जस मिलदा है जगत तो मान मिलदा है वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है होर वधांदा है देखने दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है उन त्याग दा अहंकार सता कोल है सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है उन त्याग दा अहंकार ऐसा अक्सर देखने को मिलता है पहले जो कोल है उसदा अहंकार फिर जो कोल है उसदा त्याग कीता है उस त्याग दा अहंकार अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है और अहंकार तो बचना औखा जेड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां अहंकार बैठ जांदा है दान दा सिंघासन बड़ा सोना बनाया सी भगवान आके बैठे निरंकार आके बैठे अहंकार आके बैठ जांदा है सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे नहीं अहंकार आके बैठ गया सिमरन माला दे राही रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए पर इसते भी अहंकार खड़ा हो गया अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने
अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु दा रूप बना देंदी है, बूंद सागर दे चलीन हो जांदी है, ईश्वर दा रूप हो जांदा है मनुख। भगत कबीर कहंदे ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू तू है तू है तू है। इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान दा रूप बना देता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान दा रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान दा रूप है जिसते रोम रोम देच जिदियां सारियां क्रियावां विच भगवत दी प्रदर्शित भगवत दी नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही, जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान हौमें नावें नाल विरोध है दोए ना वसे इक ठाए, ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़ उदी सारी क्रिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है मैं। पर विनम्र मनुख दा
संत दा सब कुछ तो आश्रित है, तो ही है, तो ही है, तो ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तो ही, तो ही, तो ही। एक आलम दा कहना है, अज राह चनार, अज राह चुनार, कि सलामत न कुनत इस ढंग नाल चल रस्ते देच, कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बा खलक चुनाज ही के कयामत न कुनत, खलकत देच इस ढंग नाल रह, कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनंद ओ इमामद न कुनत, जे किधरे इबादत करनु तेरा जी करे, तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए, और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिस दा मिट गया सारा अहंकार, वो प्रधान हो सकदा है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनदा है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित ते है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने, आप बैठ जांदा है।

ये बड़ा असाद रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जे किधरे अंदरों निकले तू इत औषधि हो गई। मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि दा सेवन कर

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत,

करके रात करके ठहर जाए दिन तो समय नापना औखा होगा, ठहर जाए रात ता भी समय नापना बड़ा औखा होगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नो नापन दा जरिया बनी, समय नो समझन दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आंदी है, दिन अपनिया बेड़ियां लेके आंदा, रात अपनी जाल लेके आंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दिया जो सठ घड़िया ने ते सब फाइया ने। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूटस मोड़े कवन गुने, ऐ मूरख किमें छुटेंगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है। और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नो तड़प रहा है, रात नो तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन नहीं बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी, समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत का धार्मिक अध्ययन करता, धर्म की गहराइया च जान वाला, उसने परमात्मा नू एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा की दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं, संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है उते संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दियां तीन धारावां मनियां ने, समय नूं तीन हिस्सियां विच वंडिया है, भूत भविष्य वर्तमान, माजी हाल मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दिया इन्हां ही तिना धारावां दे। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा तो किथे चला गया, चला गया भूतकाल दे, चला गया भविष्य दे। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड दे, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनिया, ठोस जीवन बनिया, वनस्पति पशु पक्षी सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद

तो इसका छुपाना ही इस गल का सबूत है, सामने ओपरा है, सामने कोई बेगाना है। अपने दे सामने ते मनुख सब कुछ उघाड़ के रख देंदा है, उदा जी करदा है अपना सीना भी चीर के इदे अगों रख दे। लेकिन बेगाने दे प्रति ते बड़ा सावधान आउंदा है, किधरे इस दियां नजरां मेरे सीने तक ना पहुंचन, ये किधरे मेरे अंदर झात ना मारे। तो जिथे भाईचारा बन जाए उथे सब कुछ खोल के रख दिता जांदा है, और जिथे पर्दा पाना पाए दो गल्लां हो सकदियां ने, या ते सामने सारे बेगाने ने ओपरे ने, और जिस ते पर्दा पाया जा रहा है कोई चंगा भी नहीं होवेगा। हमेशा जख्मां ते पट्टी बनण दी लोड़ पैंदी है, हमेशा शरीर दा दागी थां छुपाना पैंदा है, हमेशा शरीर दे अपंग हिस्से नूं ही ढकना पैंदा है, छुपाना पैंदा है, दूसरे तों लुकाना पैंदा है। जो कुछ भी लुकाना चाहते हैं छुपाना चाहते हैं, इतनी गलती स्पष्ट है ठीक नहीं होगा। गंदगी नूं ढकण दी लोड़ है, बिष्ठा नूं ढकण दी लोड़ है, फुल्लां दे उत्ते चादर पाण दी कोई लोड़ नहीं। नग्नता निर्दोषता दा सबूत है, निर्दोष है, नग्न है, नग्न है, निर्दोष है, गुनाहगार है, ढकिया होया है, और ढकिया होना इस गल दा सबूत है गुनाहगार है। गुनाह नूं ढकना पैंदा है। एक मासूम बच्चे दा जन्म होया है, नंगा है, पर इस दी नगनता दे नंगेजपणा नहीं है। इसका नंगा शरीर लोभ दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर वासना दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर काम दी प्रदर्शनी नहीं कर रहा, जबकि कईयों दे ढके हुए शरीर भी प्रदर्शनी करते हैं। गंदगी ते चादर पाई है, चादर दे चों भी बदबू बाहर आ गई है, चादर दे चों भी गंद बाहर आ गई है। तो ये दौर, ये समा, इस नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कलाल, और ये शब्द उच्चारण कर रहे ने मरदाने दे प्रति। मरदाने दे सामने इस युग दी नगनता सतगुर पेश कर रहे ने, हालांकि युग ने अपने आप नूं ढकया है, बहुत ढके है, बड़ा ढके है। एक जमाना ते ऐसा भी साडे देश दे लंघे है कि असी धार्मिक पुरुषां दीआं मूर्तियां भी नगन बनाईआं, धार्मिक मंदरां दे च भी नगन मूर्तियां बनाईआं, और बड़े बड़े साधुआं दे टोले भी चले नांगे साधु, नंगे साधु। साधु होण दी पहचान नंगा है, इहदे कोल ढकण वास्ते कुछ भी नहीं, ढकण वास्ते कुछ नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि इहदे कोल कपड़े नहीं ने, नहीं, ऐसी कोई गंदगी इसके कोल नहीं जिसनू यह ढके। फुल नंगे ही ठीक रहिंदे ने, पर जैसे जैसे मनुख दे छिद्र वधदे गए, जख्म वधदे गए, पट्टियां भी वधदियां गईयां, और जब सारा ही शरीर जख्मी हो गया तो सारा शरीर पट्टियां नाल भर गया, कपड़े नहीं पहने हुए, जख्मां दे उत्ते पट्टियां बनियां होईयां ने। हकीकत यह है, हमां तन दागदार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। ये सूफी संत कहिंदा है, रोम रोम जख्मी है, किथे किथे मैं पुंबा रखा ते पट्टी बन्ना, ते जे मैं पट्टियां इतनियां बना रोम रोम दे उत्ते, ते पट्टियां ते मेरा लिबास बन जाणगियां, पटियां मेरा पहरावा बन जाणगियां। गुनाह नूं ढकण लई जो कपड़े पहने, वो कपड़े लिबास बन गए, वो कपड़े फैशन बन गए, वो कपड़े समाज दा अंग बन गए। वरना गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, इह अहसास पशुआं च नहीं पैदा होया, विस्माद नांगे फिरे जंत। महाराज कहिंदे ने, मैं ते विस्माद हो जांदा, पशु नंगे ही घूम रहे ने, इन्हां दी नगनता लोभ दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नगनता हंकार दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नगनता वासना दी प्रदर्शनी नहीं करदी,